0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Çağrı
1: रावलाकोट समेत समूरे आजाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठ आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी मडल तनज़ीमूं वाकुफ़ थी रहियूं आहिनि। हिकु ऑडियो बि साम्हूं आई आहे। कश्मीरियुनि जो हक़ आहे, उहे कानून साज़ी कनि छा। ही कश्मीरियुनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियणु चाहिनि था। वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फौतगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज़ जारी कई वेंदी।
2: बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन फितरत हिंदुस्तान जा 14 दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिब पसीमा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितरत हिंदुस्तान जे 14 दहशतगर्दनि खे मारे वियो। केतिरा ई दहशतगर्द ज़ख़्मी थिया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जूं 4 गाॾियूं, बारूदी मवाद ऐं हथियार बि तबाह कया विया।
1: हसन खैल में ख़ारजी दहशतगर्दनि सां मुक़ाबलो कंदे शहीद एफ सी अहलकारनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी समेत अस्करी सिविलियन ऐं शहरनि जी वॾे अंग में जनाज़े नमाज़ में शिरकत। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां शहीद नायक आमिर, लायंस नायक मोहम्मद यूसुफ़, लायंस नायक मोहम्मद रियाज़, सिपाही अजमीर, अहसान ऐं रियाज़ खे भेटा पेश। मोहसिन नक़वी चयो त शहीदनि जूं क़ुर्बानीूं ज़ाया न थींदियूं। क़ौम जे दिलेर पुटनि जी क़ुर्बानीनि खे हमेशा यादि रखियो वेंदो।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ज़रई शोबे जे स्टेक होल्डर्स जे वफ़द जी मुलाक़ात। वफ़द में हारी तनज़ीमुनि जा अॻवान, डेरी थोरे लाइव स्टॉक, बिज ठाहिण वारी कंपनीज, क़ौमी ऐं मल्टी नेशनल कंपनीज जा नुमाइंदा बि शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत बहाल करण में ज़रई शोबो इनकलाबी तब्दीली आणण में भरपूर सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म डेरी ऐं लाइव स्टॉक खे अथी ॾियण लाइ पेश कयल तजवीज़ुनि जी आजा कई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि बिजली विरहाईंदड़ कंपनीज़ जी निजकारी बाबति बि इजलास थियो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त पहिरीं मरहले में इस्लामाबाद, गुजरांवाला ऐं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबिना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदारनि जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे।
1: बहरेन नेशनल गार्ड जे कमांडर हज़ हिज़ाइंस जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफ़ा जी जी एच क्यू आमद। फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर सां मुलाक़ात कई। आई एस पी आर मौजूदु मुलाक़ात में बतरफ़ी दिफ़ाई सहकार, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं अस्करी राब्तनि खे हथी ॾियण लाइ तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी। हुन खां अॻु जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफ़ा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ऐं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू सां मुलाक़ात कई।
2: बरतानिया पढ़ण लाइ वियल 10,000 पाकिस्तानन उते ई पनाह वठी छॾी। घरू मामलनि बाबति क़ौमी असेंबली जे स्टैंडिंग कमेटी इजलास में निक्शा। डी जी एफ आई उस्मान अनवर कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त गैर कानूनी तौर ते परॾेह वेंदड़ पाकिस्तानी मुल्क जी बदनामी जो सबब बणजी रहिया आहिनि। यूरोपी यूनियन ऐं ॿियनि मुल्कनि उहो मामिलो उथारियो आहे। बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा ते वेंदड़ 10,000 खां वधीक पाकिस्तानन बि वीज़ा जो ग़लति इस्तेमाल कंदे उते पनाह वठी छॾी आहे।

सिंध में पाणी जी शदीद खोट सबब सूबे जी ज़राअत खतरे में पइजी वई ऐं सापारा पाणी मां कटौती ते सिंध हुकूमत जो एहतजाज। आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त तरबेला मंगला ऐं चश्मा तार वहण बावजूद सिंध सूबे खे घटि पाणी फराहम कयो पियो वञे। खरीफ़ जी मंद में सिंध पाणी जी हथरादू खोट खे मुंहुं ॾेई रही आहे। सिंध जे आबादगारनि खे संदन पाणी जे जाइज़ हिसे खां महरूम रखणु नाइंसाफ़ी आहे। 6 खां 10 जून दौरान सिंध खे 1,45,000 क्यूसिक बंदरा 1,20,000 क्यूसिक पाणी ॾिनो वियो। सिंध जो महीने में पहिरें ॾहाके में 40% पाणी जी घटिताई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। गुडू बैराज ते 28%, सखर बैराज ते 37% ऐं कोटड़ी बैराज ते 57% खोट आहे। पाणी खोट सखर लाड़काणो दादू शिकारपुर कंबर शहदादकोट ऐं बलोचिस्तान जे ज़रई ज़मीन लाइ ख़तरो बणिजी वई आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Lots of fun, loads of musty, only one GA Radio Affiliate.
3: मालिक तू न छॾे जो आऊं जीअं तुंहिंजी आसरे सभई पाणू सूर जूं हिकु लहज़े मंझि लटेज हिकु तू न मोह मटेज ॿियो लोक मटियो त घुरियो।

साईं जा इहा हक़ीक़त आहे त को वक़्तु हूंदो बिल्कुलु असां न हूंदासीं पर हीअ काइनात क़यामत ताईं क़ाइम ऐं दाइम रहंदी। उहो बेशक कुदरत जो कानून आहे। जीअं असां खां अॻु असांजा अबा ॾाॾा पड़ ॾाॾा हुआ, हाणे उहे न आहिनि ऐं असीं आहियूं। वरी असांजा अबा ॾाॾा, असां जॾहिं पाण अबा ॾाॾा बणजी फना थी वेंदासीं, अहिड़ी रीति हिन काइनात जो चरखो रब करीम जे हुकुम सां पियो हलंदो रहंदो। सिर्फ़ अल्लाह ताला जो नालो ऐं उन जे हबीब जो नालो क़ाइम ऐं दाम रहंदो। बाक़ी इंसान फना थियण बाद हुन जो को फन फिक्र ऐं किरदार ज़िंदा रहंदो, जेको हुन जो नालो ज़िंदा रखियो पियो अचे। बाक़ी असां न रहंदासीं, तंहिं करे जेतिरो थी सघे पंहिंजो किरदार बेदाग रखूं ऐं दुनिया में प्यार मुहबत क़ाइम रखूं ऐं नफ़रतूं दिलि मां कढी छॾियूं, जीअं हिन काइनात में माण्हुनि जे दिलनि में असांजो नालो बि रोशन थिए ऐं हमेशह पियो नालो ॻाइजे।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी अंसारी है तमा जो असो साथ रहो ठीक ग्यारह वगे ती तवा सा खोड़ सारे गाली तवा नाला भी प्रोग्राम में शामिल हों चूंड मौसीकी भी अवे जरूर बुधाईदी जहां अवे पसंद हूँ इन वक्त हलूँ पा कमर्शियल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदी कदें भी न वनजे।

0: मोरू नौशहरो अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6 It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुब में वापस आया आयो तवां दोस्तन सभिनी खे देह में पर देह में भली कार चऊं पिया अवां जो पंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो अवां जी ख़िदमत में हाज़िर तव्हां सां गॾु आहियूं ठीक 11 वॻे ताईं तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं ख़ूबसूरत बहितरीन चूंड मौसीक़ी तव्हां जा नाला बि ज़रूरु शामिल कंदासीं। तव्हां असांजे नाला पंहिंजा मोकिले सघो था फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां असांजे इनबॉक्स में पंहिंजा नाला मोकिले सघो था। असांजो नंबर स्टूडियो जो जेको नंबर आहे उहो आन आहे, तव्हां कॉल करे सघो था। असांजो नंबर आहे 0332123228।

साईं मुंहिंजा जेसि ताईं ही दुनिया काम आहे तेसि ताईं ज़िंदगी जो चरखो कॾहिं बि रुकणो नाहे, वक़्तु बि कॾहिं बीहंदो नाहे। इहो पंहिंजे मुक़ररु कयल रफ़्तार सां अॻिते वधंदो रहंदो आहे ऐं डुख हुजनि या सुख, ग़म हुजनि या ख़ुशियूं, ॾींहुं हुजे या राति, उहे कॾहिं बि रुकणा नाहिनि। इहो अचण ऐं वञण जो अमल आहे ऐं हर राति पुठियां ॾींहुं ऐं हर ॾींहं पुठियां राति आहे। डुखनि पोयां सुख ऐं सुखनि पोयां डुख हूंदा आहिनि। बस रुगो माण्हू पुरअज़म हुजे, हौसले जो हथ न छॾिजे ऐं उन्हनि पीड़नि मां पार ज़रूर करे वेंदो। साईं मुंहिंजा इन ॻाल्हि में ईअं आहे त डुख सुख त अचणा आहिनि, पर कंहिं इंसान जी दिलि डुखाइजे, छो त दिलनि में अलाह रहंदो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि इंसान जी दिलि डुखाईंदव त अलाह नाराज़ थी पवंदो।

वाजी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में कुझु दोस्तनि जा नाला खणंदा हलंदासीं ऐं पंहिंजो बि जेको आहे ॿार आहे वज़न आहे उहो बि हल्को कंदा हलंदासीं। ॻोठु हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, ॻोठु अहमद ख़ान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी ऐं नंढो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठु मोले ॾिणे माशी लॻे वॾनि मारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली ज़हीर अब्बास सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा आस्ताब लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई। त दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, इंजॉय कंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप
5: अमरीकी फौज अपाची हेलीकॉप्टर किरण जी पलान में ईरान ते हमला सीरक कशम जासक खुआ मुबारक बंदर अब्बास हरमजगान में ईरान जी रेडार फिजाई दिफाई निजाम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के निशानों बनाया वो अमरीकी सेंटकॉम चवाद ईरान ते हमला अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही की जवाब में कया व्या कार्रवाई सदर ट्रंप के हुक्म से कई वही नतीजा हासिल थे बाद हमला रोके छाया है।

ईरानी मीडिया मूजिब अमरीकी कार्रवाई सबब तेहरान में नाब या बंदर अब्बास में कें भी किस्म के नुकसान जहा इतला ना मिलिया। सेरक में पानी के बिन जखीरन के निशानो बनाया वो जै बाद पीण के पानी की फरहमी बंद थी वही है। सेरक में एक मौसलाती निजाम के निशानो बनाया वो। ईरानी मीडिया मूजिब दखण ईरान में अमरीकी हमला खत्म थी वह सूरत हाल हाँ पुरसकून है। ईरान के अबन हुरमज में अमरीकी हेलीकॉप्टर के निशान बनाने की तरदीद। ईरानी नायब परदेही वजीर काजम गरीब आबादी है तो ईरान अपाची हेलीकॉप्टर के जाने वाणी निशानो बनाया। छिकटाण वाले सूरत हाल में अड़ा वाक्य गैर इरादे तौर पेश अची सकन था। ईरान जो अमरीकी ड्रोन MQ-9 पर तबाह कर दावा। पाकिस्तान इनकलाब मूजिब अमरीकी जासूस ड्रोन के बूशो सूबे में किराया वो। ड्रोन ईरानी हदन में मुदाखला की कोशिश कर रहे हो। अमरीकी नायब सदर जीडे वेन है तो ईरान से अमरीकी मुद्दे वाली मुहदे के ताई वेझो पहुंची चुका आयो। हतमी अगबराई में एक हफ्ते का कुछ महीना लगी सकन था। असा के सफारतकारी वसीले छिकताण खत्म करे मुहदे तरफ बढ़ो पवो।

ईरान जे परे वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे शिकस्त बावजूद अमरीका असांजे अज़म जो इम्तिहान वठण जो फ़ैसिलो कयो। असांजी ताक़त या हथियारबंद फ़ौज कंहिं बि हमले या धमकी जो भरपूर जवाब ॾींदी। फ़ैसिलो महफ़ूज़ रहण चाहियो ताकी मां निकिरी वञो न मुदाख़लत करण जी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

अॼु जा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में कुझु दोस्तनि जा नाला आहिनि जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ॻोठ जांवरी चौक, ॻोठ यार जांवरी खां अली ॾिनो जांवरी रईस।

फोन कई भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं यासमीन मलक मीरपुर ख़ासि खां ऐं चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे खां ॿाहिरि जी वॾी महिरबानी। सलमा आगा जो ख़ूबसूरत नगमो आहे, अवां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

जी हा सुमन प्रोग्राम रोशन सुबुह जारियूं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक गुज़ारे वॻे ताईं तव्हांजा अञा नाला ऐं ख़ुश नगमा ज़रूर अव्हांखे ॿुधाईंदासीं तेसिताईं करे हलूं पिया हिन वक़्तु कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: सचल की सरमस्त धरती।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
4: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.

0: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शादी का इवेंट और स्टेज ये पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल टी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट दूसरे का
2: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज।

अजिया समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां सां गद आयो ए तवां असा सां गद आयो हन वक्त तवां प्रोग्राम बुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां ए साईं मुझा अवां खे खबर आए त कुछ माण्हू पांजे हथन जा नह पांजे दंदन सां कटींदा आहिनि ऐं जेकॾहिं छा अव्हां बि उन्हनि माण्हुनि मंझां आहियो जेकी दंदनि सां न कतण जी आदत में मुब्तला हूंदा आहिनि जेकॾहिं ईअं आहे त अव्हां इहो बि सोचियो अव्हां खे इहा बि ॼाण हुजणु खपे त इहा हिकु सुठी आदत न आहे ऐं नुक़सान जो सबबु बणजंदी आहे इहा ॻाल्हि हिकु तहक़ीक़ मूजिबि इन आदत में समूरी दुनिया जा 30% माण्हू मुब्तला आहिनि जेका सर्वे कई वई आहे ऐं माण्हू जॾहिं ज़हनी दबाउ जो शिकार थींदा आहिनि का हुन खे परेशानी हूंदी आहे लाशौरी तौर ते ॾंदनि सां नहनि खे कतरण लॻंदा आहिनि ऐं हुननि खे इहो अहसास न ई हूंदो त उहे हिकु बेज़ारी वारो कमु करे रहिया आहिनि दरअसल उहे कंहिं शइ ते ध्यानु न आहिनि ॾींदा या वरी कंहिं गहरी सोच में ॿुॾल हूंदा आहिनि उन्हनि खे परेशानी बि हूंदी आहे ऐं फिक्र मां जान छॾण लाइ आदत हुन खे चयो वेंदो आहे जेका हुन जी नहन कतरण वारी आदत हूंदी आहे ॾंदनि सां त साईं मुंहिंजा उन सां न सिर्फ़ नह ख़राब थींदा आहिनि पर ॾंदनि खे बि नुक़सान थींदो आहे उन सां गॾोगॾु उन्हनि जी आदत जे करे केतिरा ई उन जे वात में ॾंदनि में जरासीम जा जेके वायरस आहिनि उहे फिरजी वेंदा आहिनि ऐं उन मां बीमारियूं थींदियूं आहिनि त साईं मुंहिंजा कोशिशि कयो पंहिंजे परेशान खे पाण खां परे रखो ऐं इहा ॾंदनि जेका नहन वारी आदत आहे रहो तव्हां जेके बीमारियूं आहिनि उन खां मां बची सघो था परेशानी खां परे रहियो

साईं जा असां ॻाल्हि कंदासीं जेके प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि, आख़िरी लम्हनि में असां उन्हनि गवर्नमेंट मुलाज़िमनि जी बि ॻाल्हि कंदासीं जेके वफ़ाक में आहिनि या जेके सूबे में आहिनि। त जेके सूबे में आहिनि, वफ़ाक में आहिनि, उन्हनि खे इंतज़ार हूंदो नई बजेट जो, ऐं नई बजेट में हुन खे इहो ई इंतज़ार हूंदो आहे त असांजी पघार घणा सैकड़ो वधंदी। ख़ैर बहरहाल कुझु दोस्तनि जा नाला बि खणंदासीं, हुन खे बि इंतज़ार आहे पंहिंजे नालनि ॿुधण जो। त अलीशा सुमरो सखर खां प्रोग्राम ॿुधे पई, भेण जी वॾी महिरबानी। इमामदीन ट्रगड़, नूरदीन ट्रगड़ ऐं फरहान अली ट्रगड़, राजा खान ट्रगड़ ॻोठ, ही सभु चांडियो खां। ऐं असांजा दोस्त आहिनि महबूब शर, रिज़वान शर, इमरान शर, नंढड़ी उज़मा ऐं असमा शर, ठरी मीरवा खां, मोहम्मद नवाज़ मंगी, सोहेल मंगी, मोना खान मंगी, गुडू जान मंगी, ॻोठ ट्रगड़नि खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं नंढड़ो अरसलान, नंढड़ो सकलेन ऐं नंढड़ो असलम भुटो, ॻोठ खुदरनो भुटो लॻे माहौटनि खां। ऐं असांजो दोस्त अज़ीज़ सोलंगी ऐं भुटो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ऐं भाइर असांजा वकार जतोई ऐं इद्रीस पांवर ऐं प्रदीप कुमार प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॻोठ पीरशहर लाड़काणे खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं प्रोग्राम जो आख़िरी नगमो अव्हां दोस्तनि जे नाम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ईरान जा अमरीकी हमले के जवाब में उर्दन, कुवैत, बहरीन समेत खिते में मौजूद अमरीकी हेडन के निशानों पर जीता वापस।

0: और इन्वर्टर फैंस साथ सिंध।
1: मीरान तिहम लासेर कशम जासक हुआ मुबारक बंदर अब्बास हैं हरमजगार मीरान जे रेडार फिजाई दिफाई निज़ाम ऐं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान ते हमला अपाची हेलीकॉप्टर किराइण जे जवाब में कया विया आहिनि। सदर ट्रंप जी मंज़ूरी शामिल हुई हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। मक़सदु हासिल करण बाद कार्रवाई खे ख़तम कयो वियो आहे।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा

0: Have you ever used a proxy server?
1: जी ब्यूटीफुल सॉन्ग और ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। इसके अलावा आप लोग मुझे सिंपली कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट करने के लिए GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदद पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000088, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये तीनों तरीका कार जिससे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कॉल्स हैं आप लोगों की दो अलग सेगमेंट में रिसीव की जाएंगी। अच्छा, वो लोग जो कि डेली बेसिस पे एक ही कॉल कर रहे होते हैं, मतलब एक ही बंदा बार बार कॉल कर रहा होता है, तो इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। और हम डेली बेसिस पे जो भी कॉलर्स आते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स ना आएं। अगर आते हैं तो मैं इसीलिए पहले से बता रही हूं कि अगर डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स आएंगे तो उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो कभी कभार कॉल करते हैं, या डेली वो भी ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नहीं लग पाती, जो कि लगती नहीं है कभी, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को देखते हुए सेम कॉलर्स इज नॉट अलाउड है। और अगर मेरे बताने के बावजूद भी करते हैं और उस पे अमल नहीं करते हैं तो मैं ओ आउट करने में एक देर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये सीन है, और दो सेगमेंट्स होंगे हमारे, जिसमें से पहला सेगमेंट होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें कॉलर आएगा गाना सुनाएगा, उसका गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा। और तो माने बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आपको बताया जाता है। टंग ट्विस्टर जो आपको बताया जाता है वो आप लोग कह के दिखा रहे होते हैं, और जब वो आप कह के दिखाते हैं देन वो टंग ट्विस्टर जो बंदा सही सही बोलेगा, अच्छा अच्छा बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा उस सेगमेंट को, ठीक है। तो ये सीन है,

और इस सीन के साथ साथ स्ट्रिंग्स का ये गाना इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी चलेंगे और वापस आएंगे एक अदद ब्रेक के बाद. सो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ना तो फिर हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे. दैट इज बोलो तो मानी. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 58 ब्यूटी क्रीम।

0: फाइव एच 43 फाइव डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: छा तवां भी पंहिंजो ख्वाबन जो घर एक अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी?
1: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
2: सखर शिकारपुर रोड ते,
1: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामने,
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंजूर थियल
1: एक शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
2: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
1: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
2: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़।
1: हिते तव्हांखे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: आते हैं हेलो
0: की आवाज।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: हाफिज लक्ष्मी फ्रॉम मोरो।
1: हाफिज लक्ष्मी फ्रॉम मोरो, कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे बताएं कि कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
2: गाना सुनाऊंगा, प्ले करना।
1: ओके, प्ले करेंगे।
2: इंतजार
1: हेलो, थोड़ा सा लाउडली गाएं, थोड़ा सा लाउडली गाएं
2: जी,
1: थोड़ा सा लाउडली गाएं।
2: इंतजार जी।
1: ओके जी, क्या टाइटल है इस गाने का?
2: इंतजार बराबर।
1: इंतजार कोई सिंगर क्या है, सिंगर कौन
2: है?
1: ओके, मैं सर्च करती हूँ जी। और कुछ कहना है?
2: हमारे दोस्त हैं मोहम्मद ताहिर लोन साहब, आपसे सामने साहब और सैयद इताद मिर्ज़ा बुखारी साहब, और मोरो पे प्रोग्राम कनेक्ट कराओ।
1: मोरो पे कनेक्ट नहीं है, अभी करवाते हैं जी, अभी चेक करते हैं क्यों कनेक्ट नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और 03000 11 3 4 8 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, सो कॉल कीजिए। एंड नेक्स्ट कॉलर, हेलो
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: गाजी खान रिंद गुलाम लिया।
1: गाजी खान रिंद भाई, कैसे, ठीक ठाक?
3: और खैर खैरियत है
1: जी? खैर खैरियत है। मुझे बताइए गा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
3: हाँ जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं, ओके। तो मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
3: हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे।
1: सुना दे।
3: किलंदे किलंदे जाते वें गाल के फेराए, किलंदे किलंदे जाते वें गाल के फेराए, गाल के तेराइन जिगर मोन जो जलाइन, खिलंदे खिलंदे साते वे गाल के तेराइन, तानू हो जन पतीर हो तानी दिल मथे को जीर हो, तानू हो जन को पीर हो दिल मथे जानी जीर हो, करण जेरो मेनु देवे गल के फेराए, चलंदे चलंदे छाते ये गल के फेराए।
1: ओके, किस सिंगर का गाना है ये?
3: मुमताज मौलाई।
1: ओके, मुमताज मौलाई का गाना प्ले कर रहे हैं, और किसको डेडिकेट करेंगे?
3: ये मेरा चाचा मंच पारदेव।
1: ओके, थैंक यू सो मच। और गाना ये रहा, और ये अब चलेगा, चल गया है, थोड़ा सा आगे से चलाएंगे, यहाँ से ठीक है।

0: 91.6।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंक बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: स्कॉलरशिप्स

0: ओके ठीक है. किसी को डेडिकेट करना
1: है?
0: ओके और कुछ कहना है?
1: नहीं बस.
0: ओके जी अल्लाह हाफिज. ये रहा आपका गाना.

ओके जी, आज का टंग ट्विस्टर मैं आपको बताने लगी हूँ. आज का टंग ट्विस्टर जो कि आपने कह के दिखाना है, आपने कहना है कि सुमेरा ने सरसब्ज सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे. ठीक है, ये कहना है. सुमेरा ने सरसब्ज सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे. इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि अगला जो हमारा सेगमेंट आने वाला है जिसका नाम है बोलो तो माने, उसमें आप ये कह के दिखाएंगे. और उसमें जब भी आप कह के दिखाएंगे

के साथ हम एक और गाना भी प्ले करेंगे और उस एक गाने के साथ हम जाएंगे एक अदद न्यूज ब्रेक और फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और गाना हम प्ले करने जा रहे हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज में. उसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे.

0: It's 12 p.m. This time check.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो.
0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: बढ़ाया वियो उर्दन पारा ईरान जो फायर कियल पंज मिसाइल दाखिला पाण जी दावा. कुवैत ऐं बहरीन पारां बि हमला नाकाम पाण जी दावा.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Gigi, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी का जाहिर है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरह का कार से।
1: दिल था मुसाफिर उस राह का, उस राह पर
0: आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के साथ साथ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेजेस के साथ साथ आप लोग मुझे
1: जिंदगी का मरहम
0: कमेंट भी कर सकते हैं जो कि आप कर

साथ हमारा सेगमेंट जिसका नाम है बोलो तो माने। बोलो तो माने में आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे और एक अदर टंग ट्विस्टर जो कि मैं आपको बता के गई थी ब्रेक पे जाने से पहले वो कह के दिखाएंगे। एंड आज का टंग ट्विस्टर सुमेरा ने सरसब सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे, ठीक है ये कहना है और ये कह के दिखाएंगे। और जब आप ये कहेंगे जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को।

0: ओके जी, कॉल्स को आप लोग एंटरटेन करेंगे. कॉल्स आना हमें शुरू हो चुके हैं 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉलर कोई भी रिपीट ना हो ये ख्याल कीजिएगा. अगर तो कोई कॉलर रिपीट होता है तो उसकी कॉल जो है ड्रॉप कर दी जाएगी. ठीक है, सो कॉलर हम रिसीव करेंगे एंड फर्स्ट कॉलर ऑफ दैट सेगमेंट. हेलो, ओके जी, हेलो, एक और ट्राई करेंगे. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: चलिए चलिए, खैर तो है. मैंने 11 तक कार्यक्रम कॉल किया और कॉल आपने अटेंड भी कर दिया. अभी तो पूरे आधा घंटा कॉल चलती रही है. मैं बात नहीं ना करते
0: आधा घंटा चलती रही है.
1: हाँ चलती रही, मेरे भी कॉल बहुत नहीं थी, बंद नहीं थी. मेरे को जैसे कहाँ तक चलती है कॉल?
0: पैकेज होगा ना आपका?
1: अगर पैकेज पैकेज कैसे का नहीं होता है.
0: अच्छा, घंटे मतलब घंटे वाला पैकेज अलग होता है?
1: नहीं नहीं, घंटे वाला मंथ वाला मंथली है.
0: अच्छा, मंथली पैकेज होता है ना, तो फिर आपको क्या टेंशन है आधा घंटा चले एक घंटा चले. और हमें तो पता भी नहीं चलता कि सिस्टम कब किसकी कॉल रिसीव कर लेता है और देन फिर उसे लेकर जाते हैं.
1: चलिए चलती रही है, 11 तक क्या जो आपने कॉल अटेंड की है और चलती रही है.
0: चले कोई बात नहीं, चलती रही है. तो वैसे भी पैकेज है ना, अगर बैलेंस होता ना तब मैं आपसे माजरत करती लेकिन आपका पैकेज था तो मैं आपसे माजरत नहीं करूंगी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाएं, भूलेंगे
1: टंग ट्विस्टर?
0: क्या है? ओके, मैं बताती हूँ जी, बताती हूँ. थैंक यू. सुमेरा ने सर सर सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे.
1: सुमेरा ने सर सजे सड़क पर
0: सड़क से सजे
1: सड़क से सजे सजे सपने सवारे
0: सुनहरे सपने सवारे
1: सपने सवारे सड़क.

0: सके सतु
1: वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है, आप तो छा गए आ गए।
0: क्या तो मैंने कल भी आपने ना गाना सुना है मेरा, आज आधा घंटा पूरा वेट कर दिया, वो छा गए और छा गए।
1: चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। ठीक है सागर भाई, ओके जी अल्लाह हाफिज। और इसके अलावा ये क्या हो गया, हमने तो कुछ और प्ले किया था। अच्छा सागर भाई का ये जो आधा घंटा जाया हुआ है, खैर कॉल ड्रॉप हो गई उनकी, मैं कहने वाली थी। तो जब आपने देखा कि मैं न्यूज ब्रेक पे चली गई तो आपने कॉल काट देनी थी ना, आपने आधा घंटा क्यों चला के रखे है ना, तो आपका आधा घंटा बच जाता। अच्छा 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और इसके अलावा जी कॉल्स लूंगी मैं आप लोगों की साथ साथ। नेक्स्ट कॉल है, हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अली मोहम्मद। ओके पहली दफा कॉल कर रहे हैं
0: जी बाजी,
1: पहली दफा कॉल कर रहे
0: हैं?
1: ओके कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके कॉल ड्रॉप हो गई जी, कॉल ड्रॉप हो गई। 03000113488 नेक्स्ट कॉलर, हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम आरजे साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
0: जी मैं वकार जतोई लाड़काने से था, मैं शो भी दूंगा।
1: वकार जतोई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं।
0: तो आराम सुनाए, आप कैसे हैं?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
0: जी टंग ट्विस्टर नहीं सुना लेकिन आपका प्रोग्राम सुनाए, आप बताओ तो हम बोलेंगे।
1: मैं बताऊँ तो बोलेंगे?
0: जी जी।
1: सुमेरा ने सरसब सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे।
0: सॉरी रुखसार दुखी हुआ,
1: मुश्किल है
0: तकलीफ माफ करिए रुखसार, ताने शो पसंद है तबीयत बस आए थोड़े टाइम टेक कर मैं के लिए मतलब अपनी तकलीफ माफ कर।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। और कुछ कहना है?
0: नहीं बस आप खुश रहे। ओके
1: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरा।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ Deep Skin Beauty Cream। इसमें मौजूद vitamin E beads और जदीद micro beads formula आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. इसके अलावा जी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मैसेजेस, कमेंट्स और कॉल्स के थ्रू. तो कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव होना शुरू हो चुके हैं. हाले सुल्तान ने हमें कमेंट किया है, हेलो रुखसार, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ. रेहाना खान फ्रॉम भक्कर. रेहाना खान थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी हमें मैसेजेस रिसीव हुए हैं, सहर गुलाम लगारी नज़्द गोठ बरहम खान से रिंद से शायर गाजी खान रिंद.

0: 911, what's your emergency?
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
5: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलदीब का अलदीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं
1: आज से लकी कॉलर्स को भी एंटरटेन करेंगे। और आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के जो विनर है ना वो है सागर। सागर ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कहकर दिखाया और उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा टंग ट्विस्टर कहकर दिखाया। सो और क्या और 03000113488 जिसके ऊपर कॉल करके लास्ट लकी कॉलर बनने का जो ये मौका है ना ये आपने बिल्कुल गंवाना नहीं है। ओके जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आज की अच्छी बात क्या है?
2: आज की अच्छी बात
1: यस मेरा
2: प्रोग्राम।
1: अच्छा उससे पहले नहीं सुन रहे थे?
2: नहीं सुन रहा था पहले, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे कॉल की है। थोड़ी बड़ी मुश्किल में लगी है।
1: ओके
2: और उसको मैं समाज से बात कर रहा हूँ।
1: ओके ये आज की अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने एक हफ्ते से मेरा शो सुनना स्टार्ट किया है और सुन रहे हैं, कॉल की है। थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे?
2: शुक्रिया। बस आपने सॉन्ग सुनाए
1: कौन सा?
2: चांद तारे बदनाम।
1: अरे बॉलीवुड कंटेंट तो हम चलाते ही नहीं है ना। बॉलीवुड कंटेंट हम नहीं चलाते, ये बॉलीवुड का सॉन्ग है। कोई पाकिस्तानी गाना बताएं। मुमताज मौलाई का चला देंगे। ओके ठीक है और कुछ कहेंगे?
2: कुछ नहीं बस प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी आवाज
1: अल्लाह हाफिज। थैंक यू।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6। आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो चलिए जी ब्यूटीफुल बनने के लिए जरा रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और मजे करने के लिए और जनाब साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए सो डी लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं ओके जी तो यहाँ पर बातें होती हैं प्रोग्राम में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप लोगों की खूबसूरती की जमानत है जमानत और यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको रिजल्ट कैसे मिलती जा रही है साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे कि कैसे कराएंगे लेकिन कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे ऐसी बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाने के लिए तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नात के साथ तो बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं

उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है और जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जैसे ही आप हमारे पेज पर आते हैं तो वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट भी मिल जाती है। तो बिल्कुल जी आ जाइए हमारे पोस्ट पर और साथ ही साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में आ चुके हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। और मुझे बताइए कि वो कौन सा फल है जो कभी भी नहीं पकता। ओके जी, टॉपिक को फॉलो कीजिए और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि खूबसूरती के राज जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं। अक्सर हम जो है ना वो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और वो थोड़ी सी गलती हमारी भी होती है क्योंकि हम उन चीजों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो चीजें जो होती ना वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बस आप लोगों की थोड़ी समझ ये चीजें हैं कि समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और चीजों को समझने की कोशिश किया करें। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पर तफसील से आप लोगों को बताएं तो आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में वो

आप इंतजार नहीं करेंगे, आप बस डायल करेंगे 03-15-799-0595। तो ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी गोठ में, आपके सिटी में, आपके करीबी जितने भी जनरल स्टोर हैं सारों के ऊपर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। और ये प्रोडक्ट्स हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो डायल करते रहिए 03-15-799-0595। जल्दी से नंबर डायल कीजिए और मुझे बताइए कि आपके एरिया में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ओके जी, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा फल है जो कभी भी नहीं पकता। ठीक है, और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं। लिखते हैं कि ना समझी सग्या सी वडा वेर पंजा थिया केर दुश्मन बणिया केर पंजा असां जे चमन जो बहारू लुटियूं खयासी जे पेरा मिलिया पेर पंजा। वाह वाह वाह वाह। बख्त अली सियाल हमारे साथ मौजूद है और बख्त अली सियाल भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान शहजाद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम इमरान शहजाद। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद कहते हैं। रुखसाना लाशारी हमारे साथ हैं, आपको भी रुखसाना हम वेलकम करते हैं। आपने सखावत राजपर को सलाम दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और वासा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वासा भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ हैं, ठूफ चूसल से मौलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं कि आप कैसे हैं, आप ठीक ठाक होंगी। जी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा आपके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट ऐसे ही रखे। आमीन जी आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम सलाम दीदी चंदा कैसी हैं आप, वेलकम टू शो प्यारी जानी। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मेरी प्यारी स्वीटी सी परी। और उसके अलावा क्या कहती हैं, आपने बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज भेजा है। लिखती हैं मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता मगर मजबूत लोग हमेशा याद रहते हैं, बस हिम्मत रखें और चलते रहें। जो आज सबर कर रहा है कल वही कामयाब होगा। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और दर्द दिल कहती हैं कि चंदा अलीजा और मैं आपका शो सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दोनों परियों का। और ये हमारे साथ लाहुती साजन चांडियो भी मौजूद है। लाहुती साजन चांडियो आपको भी खुश आमदीद करते हैं। और किशोर भाई आ चुके हैं, सलाम अदा खुश आयो। ये तुझो अदा खुश आया तुम अदा किया, इनफैक्ट बुधाए मुझो अदा किया। अरसमा मंगोला भाई हमारे साथ है, जेकब आबाद से आप हमें सुन रहे हैं, कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम कंपेयरिंग नाइस, थैंक यू। और हिदायतुल्लाह कहते हैं डॉक्टर ने तारीफ की कमी बताई है, थोड़ी थोड़ी कर दो कहीं मर ना जाऊं। नहीं नहीं आप मरेंगे नहीं, थोड़ी सी करेंगे आपकी तारीफ। और ये हैं आदिल कहते हैं सिद्रा सवाल रिपीट करें। सवाल मैंने पूछा है कि मुझे बताएं कि वो कौन सा फल है जो पकता नहीं।

0: ओके जी, फराज अली बिरोही भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं सो गुड शो, थैंक यू। एस खानी हमारे साथ है, एस खानी, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा, आप क्यूट हैं। सिद्रा आपका शो के नंबर क्या है आप ये बता दें। शो के नंबर है जनाब 03-15-799-0595, इस नंबर के ऊपर आप रابطہ कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको कहते हैं वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए, यहाँ पर टाइम हो जाता है। हम ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आप
1: हटो भागो, अहमद जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो, अहमद हटो वहां से।
2: इसे अचानक ही घबराए नहीं, समझदारी से काम।
1: जरा बहन
2: जरा बात तो
1: जरा बहन
2: जरा बात तो सुनो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज।

0: a product of Biocon International Pakistan.
1: Pakistan ki shaan, Wadi-e-Mehran, Mehran ki pehchan, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज. जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज.
3: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो.
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
5: Excuse me, मेरी तरफ से गिफ्ट.

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: हम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले तो वो पागल हो जाएगा।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
0: परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: भाई वीवो तो आईफोन ते शिफ्ट थिया से
1: महिन टूअर सुबह शाम हिन छा तो दादी मुटरी वो आ मोबाइल भी वीवो आ भरल हो तो किसो आ किसो आ
0: ओगी जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के 5,700 लगाया था कौन

प्यूरी प्रोडक्ट्स में तव्हां जे लाइ बिल्कुल जबरदस्त प्रोडक्ट मौजूद आहिनि ऐं हर तरह जो प्रोडक्ट तव्हां जे लाइ मौजूद आहे। ख़ासि करे जेके माण्हू मूंखे चवंदा आहिनि त भाजी असां क्रीम नाहियूं हणंदा, भाजी असां हीउ नाहियूं हणंदा, भाजी असां लाइ हीउ वारो प्रोडक्ट हुजणु घुर्जे, त वाइट एज वारनि तव्हांजे लाइ यानी कि हर हिकु माण्हू जे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट ठाहियो आहे। इहा बिल्कुल कामयाबी आहे त तव्हां सभिनी माण्हुनि जे जेको न मसलनि खे ॾिसी करे हिननि प्रोडक्ट तयार कया आहिनि, जंहिंमें तव्हांजे लाइ नाइट क्रीम बि आहे, फेयरनेस क्रीम बि आहे, एक्नी ट्यूब बि आहे, साबुण बि आहे, फेस वॉश बि आहे। छा था समझो, एॾा मज़ेदार प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। अगरि तव्हां वाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण चाहियो था त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वञो, त मालूमात वठो, मिलनि था त वठी अचो, नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो था जनाब 03-15-799-0595। ठीकु आहे, नंबर तव्हां लाज़मी डायल कंदा कयो। उन खां अलावा वाइट एज प्यूरी क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त वाइट एज प्यूरी क्रीम जेका आहे जल्द तव्हांजी जेका आहे न सफ़ा सोणी बणाए छॾींदी। तव्हांजी ख़ूबसूरती खे निखारण लाइ तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ी इहा नाइट क्रीम तयार कई अथऊं जेका तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न पंजनि ॾींहनि में सफ़ा VIP रिज़ल्ट आणे छॾींदी, जंहिंजे अंदरि एवोकाडो मौजूद आहे, एलोवेरा मौजूद आहे ऐं खीर मौजूद आहे। ही सभु नेचुरल चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। एलोवेरा बि तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी हूंदी आहे, मिल्क बि ज़रूरी हूंदो आहे ऐं एवोकाडो बि ज़रूरी हूंदो आहे। सो ही उहे चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि। ऐं मां वरी तव्हांखे ॿुधायां थी त तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो छो त वाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन खे सफ़ा गोरो चिटो VIP बणाए छॾींदी। जेके माण्हू पंहिंजी स्किन जी जेका न स्किन खे हमेशा फ्रेश रखण चाहिनि था ऐं फेयर रखण चाहिनि था, ब्राइट रखण चाहिनि था, त उहे सभु माण्हू वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण वारा आहिनि। सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कंदा, नाइट क्रीम आहे जेका तव्हां राजे टाइम इस्तेमाल करे सघो था। उन खां अलावा अगरि असां ॻाल्हि कयूं साबुण जी ऐं फेस वॉश जी, त बिल्कुल जेके माण्हू साबुण हणंदा त उन जे लाइ वाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद आहे ऐं जेके माण्हू फेस वॉश हणंदा उन जे लाइ वाइट एश फेस वॉश मौजूद आहे। त साबुण जेको आहे उहो एवोकाडो मिल्क ऐं एलोवेरा सां तयार थियल आहे। बाक़ी फेस वॉश जी ॻाल्हि कई वञे त फेस वॉश जेको आहे उहो वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे। सो एॾा ज़बरदस्त क्वालिटी जा प्रोडक्ट्स आहिनि, तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। ऐं ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि, हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो, चाहे मर्द हज़रात हुजो, ख़वातीन हुजो ऐं तव्हां टीनेजर्स जे लाइ बि आहिनि जेके भई पंहिंजी स्किन खे सुठो करणु चाहिनि था, पंहिंजी स्किन जा एक्नी ख़तम करणु चाहिनि था। त जंहिंजे चेहरे ते एक्नी काफ़ी सारा अची विया आहिनि, एक्नी जा निशान अची विया आहिनि या फिर तव्हांजे चेहरे ते रिंकल अची विया आहिनि खोड़ सारा, वक़्त खां पहिरियां तव्हां इहे कुराड़ा कुराड़ा नज़र अचो लाइ ही सभु प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां आराम सां लॻाए सघो था।

असल लखमीर अबरो कहते हैं सदरा सखर में तमाजो शो हले तो या न बिल्कुल सखर में असो प्रोग्राम हले तो सखर वारा मानू भी असा सगड़ मौजूद आए ही गानों जो हलो सखर वारन के डेडिकेट है ठीक है।

पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो अच्छा आदल बिल्कुल तुम्हारे गानों हलायूं था तुम लिंक शेयर करे सजो मुखे अच्छा ये कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ मौजूद है दादू से वालेकुम अस्सलाम कहते प्यारे भाई को वासा भाई कहते अदी से डो तमा जड़ी आरसी कदे भी बियर न मिलंदी भलो गालाइंदड़ सिक ई कुर्ब डींदड़ अदी दाढ़ी भली आई थे अल्लाह यो तमा भलायो बाबा जदी तमा के मा एडी सुठी लगनी आ तने जो रीजन यो आए त तमा पाण सुठा आयो जेको मानो भलो ना नन के सब भला लगना है आ हिदायतला कहते टॉपिक मेरे हां ये भी हो सकता है वैसे अमान अल्लाह चगर भाई हमारे साथ वेलकम करते हैं आपको और निदरी कहती हैं वॉइस तुम्हारी और ये पोस्ट देखो तो लगता है ये लड़की तुम ही हो डॉक्टर लड़की हाँ जी इसीलिए

हम ये पोस्ट लगाते हैं ताकि आप ये महसूस करें कि ये सिद्रा आपसे बात कर रही है। अच्छा जी, तो किशोर भाई कहते अदी हाँ मुखे में लगे तो मानू जो है तवा के प्रोग्राम में अचण का मना कर पाया सो तवा मानू जे के भी गाल ते न लग जो तवा ई बिंदास प्रोग्राम में इंदा रहो जे तवा इंदा आयो तो तई प्रोग्राम तवा जो आ तवा सबनी सुनन भाईरन जो आ। अनवर भाई कहते अस्सलाम वालेकुम, राजदी तन्हाई में फौजिया जा गीत सच में दिल के उदास करे छडींदा है त न बुधना कयो न बाबा उदासी जे का ना सुठी ना हुंदी आई। हां किशोर भाई तां जो कमेंट आ ना वो मां लिखाय छडियो छो तवा सब का पेरा जो है जवाब दिनो आई जवाब जो सब का पेरा नींदो आए ना वो मानो जी नजर में अची वेना जे करे समझो ता अच्छा निधिरी कहती है कि ये सही किया क्योंकि मेरी बेसी भी वही रहती है और ये सॉन्ग सूट कर रहा है उसके लिए। चलें फिर ये सखर वालों को गाना डेडिकेट जाता है। और सईदा बुखारी कहती है सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं। कहती है मैडम अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया सईदा बुखारी। सईद मानू अगर मुख्य अड़ी दुआ दींदा तो बाबा पोत अल्लाह कटाइंदो तो तमाम अड़ी दुआ दींदा कर मोहब्बत हुआ तमाम प्रोग्राम बुधो पाया। और ये हमारे साथ मौजूद है फजीला सिंधी, वालेकुम असलम कहती हैप्पी वेंसडे आफ्टरनून स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सदरा मुस्कान, आप कैसी हैं। मैं ठीक है, कल मैंने आपको कमेंट किए थे लेकिन आप खा गई। हाँ शायद रह गए होंगे। और कहती ओए प्यारी बाबू जमींदार अस पान है बिल्कुल मां उ गाल कंदी आ तो पान है मानू डिठो वे तो अगले की अगर तां कोई भी वैल्यू दियो तो उन जे हिसाब से नींदा कर तो हू पान है समझू था। बाबू जमींदार है चाचो जमींदार है वो छा मतलब वो तो उ असान जो सोचा ना सेम सेम आई लगे थो। और तुम सलाम दिना है पैंजे अम्मी के कायनात के सभी सोने छोकरिन के। ओके जी सभी सोने छोकरिन के तां इहा भी सलाह दियो जगह जगह तवां सा गड मौजूद आहन उनन के बुधायो बाबा तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थी वया है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवां जे लाए हर एक मानू जे लाए प्रोडक्ट तैयार आहे। यानी कि इहा ना है त अगर को चे त मां साबुण हणंदो आहियां मुझे लाए साबुण ना है, को चे मां फेस वॉश हणंदो आहियां फेस वॉश कोने, को चे मां नाइट क्रीम हणंदो आहियां को चे मां फेयरनेस क्रीम हणंदो आहियां। त तव्हां सभिनी जे लाइ हर हिकु तरह जो प्रोडक्ट मौजूद आहे। बसि तव्हां जेको आहे न पांजी बिल्कुल करीबी जनरल स्टोर ते वञो उतां मालूमात वठो जीअं तव्हांखे ख़बर पई त किथे मिलनि था प्रोडक्ट किथे नथा मिलनि ऐं पोइ नथा मिलनि त तव्हांखे डायल करणो आहे 03-15-799-0595।

0: FM 91.6.
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
4: सरहदी इलाके में गुजरे इतला ते खारजिन खिलाफ कार्रवाई कई, जंहिंमें 26 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया. कार्रवाई दौरान खारजी कमांडोज़ अली अख्तर, मोहम्मद

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6 जा रहा है वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से सुहाने ता भी डन कयो बाबा ता इस्तेमाल करण वारा आयो वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन जा प्रोडक्ट्स बिल्कुल बाबा बिल्कुल पक्की गाला।

ओके जी बिल्कुल डन कयो से उन सा गॾो गॾु तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया त उन सां गॾो गॾु जेको आहे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी आहियां तव्हांखे त हिन प्रोग्राम में जेके बि तव्हांखे प्रोडक्ट ॿुधाया वञनि था उन प्रोडक्ट्स खे तव्हां पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराईंदा हलो ऐं उतां वञी आराम सां वठंदा अचो ऐं तव्हांजे सिटी में नथा मिलनि कहिड़ो सिटी आहे कहिड़ो ॻोठु आहे त इहो बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा कयो जीअं असांखे ख़बर पए त बाबा किथे किथे अञा ताईं अवेलेबल कोन थिया आहिनि सो असां सां गॾु मौजूद आहिनि हिते सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली ऐं लारकाणे खां मां अवां सां गॾु मौजूद आहियां ओके जी सो केर केर मूंसां गॾु किथां किथां मौजूद आहे मूंखे ॿुधाईंदा वञो पिया तव्हांजा मैसेज आहिनि तव्हांजा कॉमेंट आहिनि

फकीर जी वाह वाह वाह वाह डाडो भलो गानो तहां बुधो और ये हमारे साथ मौजूद है। लिखते अर्ज किया है जो किस्मत में नहीं उससे गिला नहीं करते, जो किस्मत में नहीं उससे गिला नहीं करते, कुछ लोग तो मिलकर भी मिला नहीं करते। सुना है रोज मिलने से कम होती है मोहब्बत, सुना है रोज मिलने से कम होती है मोहब्बत, ये सोच कर तो हम आपसे मिला नहीं करते। गुलाम शबीर तुनियो भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह इतनी अच्छी आपने शायरी सुना दी हमें, बहुत शुक्रिया।

0: 着你爱那皮哟噔噔噔，不撒呀哩呀呀哩呀，皮哟噔。ओके जी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हेलो एंड गडो गर जेको मां हाने ता के बुधाई ना बाबा त जेको तमा के पेरिया मो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बुधायो त हाने तमा के डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बुधाई ना त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जेके तमा जी स्किन जरा केतरा जरूरी आहन सो जेके भी सोना मानो सा के बुधन पया ए सोना थेन चाहन पया त बाबा तमा जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरे तमा इस्तेमाल कयो पया त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा पांजे करीबी जनरल स्टोर सा वनी वठी जो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा जी स्किन जलाए तमाम गणी जरूरी आहे सो द डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है इन जे अंदर माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन आहे ऐं वाइटामिन ई बीट सां तयार कई वई आहे सो तमाम सिंपल ऐं तमाम जेको आहे न सोनो फार्मूलो आहे जेको तव्हां पंहिंजी स्किन ते लॻाईंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त तव्हां वाकई शइ लॻायो पिया ऐं अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त तव्हांखे सिर्फ़ ॿ रातिन जे इस्तेमालु तव्हांखे रिज़ल्ट मिली वेंदो सो ॿ रातिन में रिज़ल्ट एॾो जल्द एॾो बिल्कुल ऐं रिज़ल्ट जेको आहे न हीउ तव्हांखे मिलण खां बाद में तव्हां पंहिंजी स्किन खे ॾिसंदा त तव्हां इहो महसूसु कंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका आहे उहा वधंदी वञे पई ऐं तव्हांजे चहिरे ते जेके निशान आहिनि डार्क सर्कल्स आहिनि या वरी डार्क स्पॉट्स आहिनि या फिर तव्हांजे स्किन ते जेके ब्लैक हेड्स अची वेंदा आहिनि उहे सभु चीज़ूं ख़तम थींदी वेंदियूं ऐं तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी ऐं तव्हांजी स्किन ब्यूटीफुल थी वेंदी सो चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो तव्हां हर कोई इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो त जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका जॾहिं तयारु कई वञे पई त इलाही सारे डॉक्टर्स खां पुछा करायो वियो हिन क्रीम खे बिल्कुलु जेको आहे न सुठी हिकड़ी जेका मोट मिली तॾहिं ही क्रीम तव्हां ताईं पहुचाई वई आहे जेके माण्हू पंहिंजे स्किन जी वजह सां परेशान हूंदा आहिनि त असां हीउ प्रोडक्ट लॻाए सघूं था या नथा लॻाए सघूं ऐं तव्हां अक्सर कोई बि प्रोडक्ट खणण खां पहिरियां कंफ्यूज़ हूंदा आहियो त जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त इहा जेका कंफ्यूजन आहे तव्हांजी इहा ख़तम थी वेंदी छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न फुल तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ आहे ऐं जंहिंजी स्किन सफ़ा घणी सेंसिटिव आहे न हू बि आराम सां लॻाए सघनि था अगरि तव्हांजी स्किन जेका सेंसिटिव आहे तव्हां कोई प्रोडक्ट नथा लॻाए सघो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे बिल्कुलु लॻाए सघो था तव्हांखे मोकल आहे सही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां राज टाइम लॻाईंदा छो त हीअ हिकु नाइट क्रीम आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिले थो सो डी स्किन फेस वॉश जेको तव्हांखे मिले थो ही हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे ऐं हाइलोरोनिक एसिड सीरम हिन जे अंदरि मौजूद आहे जेको तव्हांजी स्किन खे डी हाइड्रेट अगरि तव्हांजी स्किन थी वई आहे त हुनखे हाइड्रेट कंदो तव्हांजी स्किन खे क्लीन बणाईंदो तव्हांजी स्किन खे स्मूथ बणाईंदो लविंग बणाईंदो तव्हांजे चहिरे ते जेका ड्राइनेस अची वेंदी आहे न उनखे ख़तम करे छॾींदो सो डी स्किन फेस वॉश तव्हां लॻाए सघो था पंहिंजी स्किन ते अगरि स्किन सेंसिटिव आहे नॉर्मल आहे कहिड़ी बि टाइप जी आहे तव्हां बिल्कुलु लॻायो का बि टेंशन कोन्हे का छो त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेके आहिनि तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयार थियल ऐं तव्हांखे ॾींदा अहिड़ो रिज़ल्ट जेको तव्हां हमेशह चाहींदा आहियो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में अवेलेबल आहे नाहे त पोइ बाबा डायल कयो 03-15-799-0595 ऐं गॾो गॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कीअं इस्तेमालु कंदा डी स्किन फेस वॉश सां गॾु इस्तेमालु कंदा डी स्किन फेस वॉश जेको तव्हां ॾींहं में 3-4 दफ़ा इस्तेमालु करे सघो था ऐं राजे टाइम पंहिंजो फेस वॉश कयो डी स्किन फेस वॉश सां उन खां पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो ऐं पोइ तव्हां ॾिसो त तव्हांजे चहिरे ते केॾी ख़ूबसूरत जेको आहे न उहा ग्लो अची वञे थी तव्हांजी स्किन केॾी ख़ूबसूरत थींदी वेंदी सो तव्हां लॻाईंदा तॾहिं त ख़बर पवंदी न सो लॻाए ॾिसो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो उन खां अलावा जेको आहे फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो बाबा मिटनि माइटनि खे ॿुधायो दोस्तनि शेयर कयो जेके जेके मतिलबु पंहिंजी ख़ूबसूरती नथी मिले त हाणे तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांजे पंहिंजे हथ में अथव छो त तव्हां मार्केट वेंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करे ईंदा डी स्किन फेस वॉश परचेज़ करे ईंदा त एक्चुअली तव्हांजे हथ में सवाल पल आहे जेको पचंदो ई न आहे सो इन सवाल ॾींदा वञो त प्यारा प्यारा फीडबैक आहे जेके मूं ताईं पहुचंदा वञनि था तव्हांजा फीडबैक पढ़ंदासीं बिल्कुलु तव्हां सां कुर्बन जूं कचहरियूं हलनि पयूं पूरे पूरे 3 बजे ताईं हलंदियूं रहंदियूं ऐं ॾिठो वञे त अच्छा हाँ सही है सही है ओके जी सो यहाँ पर हमारे साथ सोनी भी मौजूद है और सोनी कहती हैं आप जान में भी आ गई आपके साथ साथ मैं भी फेसबुक पे आती वहाँ आकर आपका शो सुनती आप ही अगर वहाँ हाँ ये बात तो है बिल्कुल चलें यहाँ पैनल पर ही ठीक है और ऐसे ही आप हमें मैसेज कर दिया करें और साथ साथ जो है आप इस्तेमाल भी करती रहा करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश क्योंकि जनाब अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और अनवर भाई कहते हैं प्रोग्राम अभी आपका सुना है स्टार्ट किया अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया और जी लखमीर अबड़ो कहते हैं सखर में शो हले पयो तो पंहिंजे प्यारनि ॾे सलाम मोकिलणा हुआ
1: सभ खां पहिरियां सलाम मुंहिंजे बाबा साईं खे, उन खां पोइ मुंहिंजा भाइर आहिनि अमीर अली तनवीर अली अबड़ो। ओके जी, तव्हांजा सलाम तव्हांजे प्यारनि ताईं पहुची। अगरि हू प्रोग्राम ॿुधंदा हूंदा त बिल्कुलु उन्हनि ॿुधी वरितो हूंदो। और निदड़ी कहती है कि और मैं बताती हूं ना, भाई हाँ आप ही बता दिया करें, बाकी कोई बताता तो फिर मजा नहीं आता। करीम बख्श शर्म हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं सदाकत कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, समझ नहीं आई जरा बात। अच्छा अनवर भाई, तुम टॉपिक ते गालायो आहे, टॉपिक ठीक आ ठीक आ, समझी वयासी। इते एकड़ो गानो हलाईंदासी जेको आहे मुमताज मौलाई साहब जो। मुमताज मौलाई जे गाने जी फरमाइश खोल सर माण मुखे कन पे आजे प्रोग्राम में, सो ही

ओके जनाब, तो मैं कहाँ खो गई, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी। अच्छा तो अच्छा यह गाल ना, अगर मानू किरंदो हड्डा टूटंदा तरी तो मानू सिकंदो ना। अच्छा वफा मुमताज अली खोसो हमें सुन रहे हैं और आपके साथ मौजूद ही वफा मुमताज अली खोसो भाई कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम तमाम जबरदस्त है, सो मोहब्बतूं प्यारे भाउन जो। और उनका अलावा वासु भाई ठीक है

0: ओके जी, अब्दुल जब्बार मीराली हमारे साथ कहते हैं हाय अदी सदरा, कैसी हैं? हम आपका प्रोग्राम रोजाना सुनते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कंपेयरिंग भी। मैं अशरफ अली मीराली एंड थैंक्स फॉर प्लेइंग शमन अली मीराली सॉन्ग। शमन का गाना तो वैसे तकरीबन हमारे प्रोग्राम में चलते रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके अलावा किशोर भाई कहते होश और खामोशी से काम ले प्यारे, हम अभी सबर में हैं कब्र में नहीं। ये मतलब चलो जी बिस्मिल्लाह, टाइम थियो आज शॉर्टिंग प्रोग्राम में जना व्हाइट एज स्पॉन्सर किया जा रहा है, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप सुनते जा रहे हैं और जना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते जा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।
1: वतन की महा अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: इट्स 2:30 PM This time check is brought to you by
4: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream,
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
7: GFM 91.6।

वाकई बस ही देना तो बोले ना ओके तो वापसी आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास प्रोग्राम सुन रखे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना बताए ना ओके तो यहाँ पर आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने की बातें होती है प्रोग्राम में आपका हमारा साथ डेली बेसिस पर होता है जुम्मे को बचोड़कर एक बजे से लेकर तीन बजे तक मैं आप लोगों का रोजाना अगर सर खाती हूँ समझ रहे हैं तो आज प्रोग्राम के लास्ट लेग में आ चुके हैं जनाब जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार किया फिर स्टार्टिंग से लेकर मेरे साथ मौजूद है सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया कोई मुझसे कहा

जियो क्रिस बाबा कोई तुस्सा कहां, बहुत ही प्यारा गाना, पाकिस्तानी मूवी का जो है ना वो टाइटल सॉन्ग था। और इसके साथ साथ गाना आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, एक और गाना भी हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम सुनते रहेंगे। बिलाल सईद की आवाज होने वाली है ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लाइक अ शाइनिंग स्टार, वो ऐसे गाता है। अच्छा उनका अलावा जेको तो तव्हां जो मैसेजेस आया बिल्कुल पढ़ूं था, पर तव्हां खे थोड़ो ॿुधाईंदमि, सफ़ा थोड़ो ॿुधाईंदमि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां अञा ताईं कोन पिया लॻायो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल कयो, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तयार कई वई आहे वाइटमिन ई बीड्स माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन सां। सो अगरि तव्हां बि लॻाइणु चाहियो था त बिल्कुल तव्हां लॻाए सघो था। ऑल स्किन टाइप जे लाइ बिल्कुल ये सां मुंहिंजी तरफ़ां तव्हां सभु लॻायो, ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। ऐं सभ खां भली ॻाल्हि लाइट वेटेड फार्मुलो आहे, तव्हां राजे टाइम कोई बि नाइट क्रीम लॻाइणु चाहियो था जेका सफ़ा लाइट वेटेड हुजे ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट बि ॾे, तव्हांजी स्किन ग्लो बि बणाए तव्हांजी स्किन खे, त बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल करे सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां इस्तेमाल कंदा त ॿ रातियूं अगरि इस्तेमाल कंदा त ॿिनि रातियुनि खां पोइ तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी। ऐं उन खां अलावा जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि इस्तेमाल करणो अथव, समुझो था। सो इहे ॿई चीज़ूं गॾु लॻायो, सोणा सोणा थी वञो। ऐं नथो मिले अगरि तव्हांजे एरिया में त डायल कयो 03 15 799 0595।

जल्दी से पढ़ लेते हैं कहीं आपके मैसेजेस रह ना जाए। ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बारिश सिद्रा, गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू। शो आपका बहुत अच्छा है। मीरपुर खास से उम्मीद अली लाशारी हमारे साथ।

सलाम चोवन कुमार अदील अबड़ो खालिद जुड़े जो और खालिद इकबाल लाशारी प्लीज प्ले शमन शमन तो आ चुके जी आपने शमन का गाना सुना होगा और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है चाचा खालिद कहाँ हैं नजर नहीं आ रहे आजकल और जन्नत मुझे सॉन्ग सुनाए लाज ड्रामे का ओएसटी है लाज ड्रामे का चले मैं देखूंगी अगर मिल गया तो लगाती हूँ आपके लिए नहीं तो कल लगा लूंगी ठीक है और लियाकत अली खाखरानी हमारे साथ ही लाड़काना से कहते प्यारी बहना सिद्रा अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाव वालेकुम अस्सलाम हमें कोई भी मजे का गाना सुनाए तो आपकी मेहरबानी होगी जी भाई मेरे प्रोग्राम में मजे के गाने चलते हैं आप सुने एंजॉय करें और ये बाजी सिद्रा हमारे पास बहुत गर्मी है आपके साइड तो हमारे से भी ज्यादा गर्मी होती है फिर आप लोग कैसे अब कोई बड़ी बात ही नहीं हाँ भाई 52,000 हेलो बने ॾिसो त गर्मी लगे तो ॾाढी पढ़ी लिखी आहे और उमेद अली लाशारी भाई हमारे साथ है तवा सलाम ॾिना आहिनि अज़ीज़ सोलंगी गफूर और आकिब लाशारी आरजे गुलनाज आरजे हारून बलोच अनवर और मी सो थैंक यू अच्छा ये लिखते हैं भाजी चले इमरान भाई इंजॉय करे और ज्यादा मुख्य लगे तो मानू अगर तव्हां वेगो गाड़ी वठी करे ऐं मतिलब वठी रोड ते निकिरंदा न माण्हू पोयां तव्हांखे कंदा सॾु ओ ज़मीनदार ज़मीनदार न बल्कि तव्हांखे सॾंदा ओ मज़ूर मूंखे ईअं लॻे थो छो त हाणे जेको हिन जो ट्रेंड हलण स्टार्ट थियो आहे त अगरि कोई बि सफ़ा ओरा जेको न माए कल तव्हांजो सो कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हमारे साथ है भाई का बहुत शुक्रिया इरम कहती है दिलबर दोस्त मां ठीक आया तां बुधाए सोनी कीअं आहियो और सोनी कहती आप प्लीज ज़ीशान की आवाज़ में ये वाला गाना तो लगाए चले टाइम बच गया तो लगा लेते हैं बहुत शुक्रिया सोनी आप हमारे साथ है सुबल अली खास के लिए हमारे साथ है भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ है

असां ॾाढो भलो गानो आहे, डेडिकेशन मूंखे वञे पई दर्द दिल जी तरफ़ खां। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी प्रोग्राम आहे वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, तव्हां ॿुधो पिया वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां। सो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि लॻायो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि लॻायो ऐं पाण खे सफ़ा चमकाए छॾियो। अच्छा निदड़ी कहती है मीम्स के बिना अपना गुजारा नहीं, आई एम राइट ना? यस बाबा, मीमर्स का पूछो तो मीम्स उन केतरा इम्पोर्टेंट आए भी उन अच्छा मोहम्मद अली कोसो हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। वफा मुमताज अली कोसो भाई चाहता चो गोठ रईस गुलशन कोसो से, वफा मुमताज अली कोसो कलंदर बख्श कोसो, वालेकुम अस्सलाम। शो तवा की वणे पयो सो मोहब्बतूं आहिनि प्यारे भाउनि।

पंहिंजे दर्द दिल तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे, ठीकु आहे. मोहम्मद अली खोसो, तव्हांखे सॉन्ग्स वणनि पिया, प्रोग्राम जा, सो थैंक यू. अच्छा, स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम असलम, कहते मैं भी आ गया. चले, आप हमारे साथ मौजूद है कंबर सिटी से. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. नहीं तो गाने की फरमाइश कही, मास्टर मंजू जो गानो है, हले पो बुधो इनके.

हाउ साई वाच गानो बुधो पया तो हां हजार खान जतोई भाई असा सगड मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आयो।

अच्छा किशोर भाई क्या कहते हैं, बीवी शोहर से बोली कि आज मेरा गला बहुत दुख रहा है, शोहर ने कहा दबा दूं, बीवी बोली क्या कहा, शोहर ने कहा दवा दूं, दवा दवा बिल्कुल वो वैसे ही जैसे शोहर ने बीवी से कहा कि मोटी रोटी दे, तो बीवी ने कहा क्या, तो उसने कहा मोटी रोटी दे, मतलब मोटी रोटी ये भी आजकल बड़े चल रहे हैं और आजकल व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, तो जो जो चीजें चलती हैं तो आप जरा उनके ऊपर फोकस किया करें, ठीक है। अली अकबर ब्रोही बात आज मोहब्बत वाइन प्रोग्राम विद उपया हिदायतुल्लाह, ठीक है जी, ठीक है, गर्मी तो वाकई बहुत ज्यादा है। भाई तो केर थो मानन के खुश करण चाहे बुधायो मके यो केरा।

सो पाण खुश रहो बस खुश रहो अनमोल भाई ते अवां भी सिस दिलन जा मालिक आयो सोचम पेज ते ही सॉन्ग जी फरमाइश कया हर वक्त थोरो पर अवां ही सॉन्ग हलाय छड़ो अच्छा हन कर ऐं गानो तव्हां खे ॿुधण ॾियूं था ऐं हाणे तव्हां खां इजाज़त वठूं था ठीकु आहे ओके लियाकत अली खाखरानी लाड़काना से किथे वाकी अदी थैंक यू सो मच प्यारा भा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि ईअं ख़ुशि रहो हमेशह असां सां गॾु मौजूदु रहो ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ईंदी स्किन जो जेको आहे न इस्तेमालु कंदा रहो ऐं तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन इहो मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो ऐं नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ईअं न त हीउ नंबर मां तव्हांखे ॾिसो प्रोग्राम में केतिरा दफ़ा

ऐं तव्हांजे एरिया में आई नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल 1579905 ईअं न त हीउ नंबर मां तव्हांखे ॾिसो प्रोग्राम में केतिरा दफ़ा ॿुधाईंदी आहियां, पोइ बि तव्हां अचे अची असांजे ॻोठ में त कोन थो मिलेव। अरे बाबा, हिन नंबर ते रातो कंदो त मिली वेंदो न, हेतिरी ॻाल्हि आहे जेका तव्हांखे समुझ में नथी अचे। त नंबर ते लाज़मी डायल कजो ऐं हुननि सां ॻाल्हायो, हुननि खे चओ त बाबा फलाणे ॻोठ में असां रहंदा आहियूं, असांजे एरिया में नथो मिले हीउ प्रोडक्ट जेको ॿुधाए पई भाॼी सिधा।

0: कैसा महसूस हो रहा है?
1: उसे खो के जिसे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

उन दरख्तों के नीचे से गुजरा माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी ना गर्दो गुबार, जहाँ तक नजर देख सके खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, न मौसम गर्म न ठंडा। अभी इसी सोच में ही था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से उसकी जानिब बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका, सिपा सलार आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता। सिपा सलार रीछ वाले को बोले, बादशाह सलामत आप कहाँ गायब हो गए थे, आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है। मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर महल की जानिब चल दिया। जब महल में पहुंचा अजीमुल शान इमारत दिया रह गए थे, आप सब भूलकर नहा धोकर शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जां मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे हुए थे तो ख्याल आया आखिर हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वहीं पर पहुंचा जहां लश्कर था, तो देखा दरख्त वहां अब भी मौजूद है। सोचा चलो देखते हैं क्या दरख्त के बीच से गुजर कर माहौल बदल गया। वही मकाम, वही वक्त, सामने उसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है, वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब तमाशा था। तो जनाब सब तमाशा है। अगर आप समझ जाएंगे ये बात, आपकी जिंदगी हो जाएगी बेहद आसान। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम सामईन को। जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बखैर आफियत है, और यकीनन अपने मामूलाते कार में मसरूफ हैं। तो जनाब इन लम्हात में हमने किया आपको ज्वाइन, रही हमारा प्रोग्राम आपके साथ जारी और सारी रहेगा। गपशप

फोनी है आपसे प्रोग्राम का बकायदा आगाज इसे दुआ के साथ करना चाहूंगी। अल्लाह जो परेशान हाल है अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह पाक तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सबको अता फरमा। अल्लाह इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतने गुना माफ फरमा जितना तू रहमान है, और इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान जितना तू राजीक है। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।

0: आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है जो आप किसी को भी दे सकें? ये जानने के लिए आपकी कास को शामले प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, ये सिस्टर मां गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काकड़ी कैफे बोल रहे हैं।
0: अदा क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: सिस्टर, मोबाइल के अलावा कोई तोहफा है ही नहीं, किसी को दोस्तों को मोबाइल का ही तोहफा है।
0: ठीक है, दोस्तों को याद कर लें।
1: सिस्टर, दोस्तों को एक मशूरा लेना है। मोटापा जो होता है, हमारा पास एक लड़का है तकरीबन 8 साल का, उसका मोटापा बहुत बढ़ता जाता है, इसके बारे में कोई हल है तो बता दो। दोस्त है कुर्बान खास के लिए अजीज जरवार पंहिंजो प्यारो दोस्त खालिक लाशारी।
0: ठीक हो गया जी, माजरत के साथ मैं हेल्थ के मामले में अपनी तरफ से कोई भी मशवरे नहीं दे सकती। अगर आपकी तरफ ऐसा कोई है बंदा तो आप उसको जो है चेकअप करवाएं, डॉक्टर बेहतर गाइड करेगा आपको। और ये सेहत के मामले में मैं ऐसे टोट के आपको बताऊं, खुदा ना खास्ता उसे कोई नुकसान हो उसकी सेहत को, आप कहेंगे आरजी गुलनाज ने बताया था। तो खाम खाम मुझे जो है ना बदुआएं नहीं लेनी किसी से भी, तो मुझ पर जरा हाथ होला रखे। बहुत शुक्रिया आपका, आप शामले प्रोग्राम हुए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक के बारे में यही कहूँगा, सबका जिंदगी में खुशी देना तोहफा है जी।
0: ठीक हो गया, दोस्तों को याद करेंगे?
2: भाई दोस्तों याद करूँगा तो मैं एक आपको अर्ज करूँगा, आपको 18 साल मुक्कम।
0: क्या कहा था मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताएं।
2: मैं क्या पुराने चैनल पर आप शो करती थी इतवार को?
0: जी हाँ,
2: संडे डाक।
0: हाँ जी, करती थी मैं।
2: आप में गुल करती थी को करती
0: थी। हाँ जी, तो क्या हुआ असल बात बताएं।
2: नहीं भाई, कल आपने मैसेज किया था ना आपको।
0: अच्छा, कल की बात कर रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। चले जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू। जी
2: हेलो,
0: जी जी बोले, सुन रही हूँ। होगी जी यार, मैंने आपसे पूछा आपके ख्याल में पूरी दुनिया में जैसे अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट देना, वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट आपके ख्याल में क्या है जो आपने अपने किसी दोस्त को देना हो, किसी फैमिली मेंबर को देना हो, किसी को भी देना हो, लेकिन बेस्ट तोहफा क्या है? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी,
0: कौन बात कर रहा है? क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
1: टॉपिक के हवाले से ये तोहफा

0: बदतर ना, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे फकीर हो, सभी के साथ एक जैसा सलूक करना, मुस्कुरा कर मिलना, उनसे प्यार से बात करना, इसके अलावा कोई खूबसूरत तोहफा हो ही नहीं सकता।
1: ठीक हो गया आदा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
0: चलो ठीक है, सलाम
1: सबकी जानिब से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप शाम में प्रोग्राम हुए। देखें सब लोग मुख्तलिफ हैं, सबकी राय भी मुख्तलिफ है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहेंगे आली रजा लगारी, सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है दुनिया में?
2: मदद करण जो गरीब आहे।
1: अच्छा मुझे ये बताएं, आपके दोस्त ने आपको बुलाया है अपने बेटे की सालगिरह में, उसकी क्या मदद करेंगे आप?
2: मदद कंदी बाकी वगैरह
1: है। चले ठीक हो गया जी। आपकी तरफ शायद नेटवर्क का मसला है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
2: नेटवर्क
1: हाँ जी, बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू सो मच आपका। आप शाम
2: को
1: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ओके, ये नेटवर्क के पता नहीं क्या मसले हैं, शायद वोकेशंस हैं तो सेल फोन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मोस्टली नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। फरहान मीरानी सखर से, दुआ आपने कहा बेहतरीन तोहफा है, और गुट हाजी याकूब चौहान से, बलोचा चौहान आपका शो बहुत अच्छा है, काफी दिनों बाद आपने हमें ज्वाइन किया है जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। और आई डोंट नो ये कौन है, आपने नाम नहीं लिखा अपना। एनीवे जनाब, बातों के सिलसिले को ब्रेक देते हैं, छोटे से तशहीरी वक्फे के बाद गेन आपको ज्वाइन करते हैं।
3: यू तो है मशहूर मासूम शाह का मीनार,
4: सखर की खजूर
3: सिंध का बढ़ाती है।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो,
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करोला।

सेफ्टी रहती है और हर सेट को दूसरे सेट से बचाने के लिए गत्ते या फोम की पतली तह लगाकर डब्बे में रखे ताकि वो आपस में ना टकराएं। और चूड़ियों को ऐसे कवर में भी रखा जा सकता है जो जिप टिच बटन या चिकन पट्टी से खुलते हों, ताकि हिफाजत के साथ निकालने और रखने में आसानी हो। कपड़े और हल्के फोम के छोटे बटुए बनाकर उनमें अलहदा अलहदा कड़े रखें ताकि उनके नग ना निकले और रगड़ से भी महफूज रखें। तो जनाब, आई होप कि ये वाली इन्फो जो है वो आपकी रूटीन लाइफ में यकीनन आपके काम आएगी। और आपको बताते चले, आइंदा बजट में इम्पोर्टेड मेकअप, लिपस्टिक, परफ्यूम्स और ब्रांडेड कपड़े सस्ते होने का इम्कान है। सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी आ सकती है, तो खवातीन के लिए ये फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। ये हुकूमत ने आइंदा बजट में इम्पोर्टेड मेकअप, बनाव सिंगार के दीगर सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का फैसला किया है।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM
1: भरोसे
2: गैर जरूरी तौर ते बाहर न वञो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो
3: अज़रा बहन जरा बात तो सुनो मानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
4: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान
0: GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज

0: पाकिस्तान आर्मी जो हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में जो हादसे और शिकार हेलीकॉप्टर में समूरा एहलकार शहीद आईएसपीआर चवायत MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी सबब हादसे जो शिकार थे हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार समूरा एहलकार शहीद थी वह हादसे जो कारण मालूम करने लाइ जांच कई पे वने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ थे कौमी इक्तसादी काउंसिल इजलास खत्म वफाक है सूबन विच में अहम तरक्याती मनसूबन के इतफाक कौमी इक्तसादी काउंसिल अहम मुआशी हदफन की मंजूरी दई छी मुल्क की चटदार तरक्की गडियल हिकमत अमली जुड़ने के इतफाक कौमी तरक्याती प्रोग्राम तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तवनाई ए समाजी शोबन के तरजीह देने के इतफाक वसीलन की मनसफानी विरच करण के इतफाक वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्की मैशत वन चैलेंजेस के मुंह डो टीम वर्क तौर पाकिस्तान के मफाद में फैसला कया मैक्रो सतह से मुल्की मैशत मुस्तहकम थी है मुश्किल बावजूद आज में प्रोग्राम से अमल कर रहा हूं खिते सूरतयाल सबब तेल जो कीमतों भी आसमान से पौतल हैं मुश्किल सूरतयाल में आवाम के रिलीफ फराहम किया वो हुकुमरान इताद विच में इंदड़ माली साल लाए तरक्याती फंड वधायण ते इतफाक किसाक दार सदारत हेठ को टेक्निकल कमेटी जो कार्यूं कामयाब सूबन पारा नए माली साल के वादू टैक्स आमदनी मरकज
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नई का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जी एफएम 88

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मेरा है जिंदगानी पर कदम जब भी बढ़ाती हूँ, कहीं कांटों से बचना है, कहीं दिल को कुचलना है, कहीं अपनों की बेरुखियाँ, कहीं गैरों के ताने हैं। मैं थाती है कि राहें जन्नतों की कब भला आसान होती हैं, कहीं सहरा की तपती रेत, कहीं ताइफ के पत्थर हैं, कहीं अपने ही तलवारें लिए इस जहाँ के दर पे हैं। अगरचे है बहुत मुश्किल मगर इस राह से पहले भी कितने लोग गुजरे हैं, इन्हीं कदमों पे चलना है के हर एक हसी मंजिल तुम्हारी मुंतजिर होगी। ये याद रखना तुम, हसीन एक मंजिल तुम्हारी मुंतजिर होगी, यकीनन मुंतजिर होगी। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामेईन को। सामेईन जी, मीरपुर खास एफ एम 88 के लाइव स्टूडियो से आपके साथ आपकी मेजबान गुलनाज। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां, कहीं चेहरे इसमें छुपे हुए एक अजब सी ये नकाब है, कहीं छाव है, कहीं धूप है, कहीं कोई और ही रूप है, कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। ये जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं जानलेवा अजाब है।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है संत जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डूगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंह जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खांसी नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलग।

का अलाबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: exam.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी. मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
2: Jacobabad, Nawab Shah, Quetta, and Chitral. You're listening to the Hot FM Network.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सबूरा नतीजा अलतवा हेठ रखण जो हुक्म दई छो। अदालत हुक्म दिनो था इदारे जा रुगो रोजमर्रा जा मामला हलाया वेंदा, कें भी इम्तिहान टेस्ट या इंटरव्यू के नतीजन की मंजूरी या ऐलान न करे सकबो।

सिंध के हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिया?
5: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस हो रहा
1: है? उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात कर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी दाधार नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या है सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो लई
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो।
2: It's 8:15 AM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Sindh ki ho to awaaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network.
5: GFM 88 Network.
4: Sindh ki awaaz.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसे गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: कहती अम्मी मैं मनोज होती जिंदगी से अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना दे ले।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल वफ़ाक़ी ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे तरक़ियाती प्लान में 929 अरब रुपियनि जी कटौती करे छॾी। 126 अरब रुपियनि जी कटौतीअ खां पोइ वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजेट घटिजी 1000 अरब रुपया थी वई आहे। सूबाई तरक़ियाती प्लान में बि 800 अरब रुपियनि जी घटिताई, 557 अरब रुपियनि जी कटौतीअ खां पोइ पंजाब जे तरक़ियाती बजेट घटिजी 749 अरब रुपया थी वई। सिंध जे तरक़ियाती प्लान मां 137 अरब रुपया काटा, सूबे जी तरक़ियाती बजेट 706 अरब रुपया थी वई। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी तरक़ियाती बजेट 109 अरब रुपया घटिताई खां पोइ 455 अरब रुपया मुख़्तस। बलोचिस्तान जी तरक़ियाती बजेट 308 रुपया बरक़रार। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में अहम मुआशी हदफ़नि जी बि मंज़ूरी डि॒नी वई। वसीलनि जी मुनसफ़ाणी विर्छ करण ते बि इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म जो चवण हो त मुश्किलातुनि बावजूद IMF प्रोग्राम ते अमल करे रहिया आहियूं। ख़िते जी मौजूदा सूरतहाल सबबि तेल जूं क़ीमतूं बि आसमान ते पहुतल आहिनि। मुश्किल हालतुनि में बि अवाम खे रिलीफ ॾींदासीं।
1: हुकुमरान इतिहाद विच में ईंदड़ माली साल लाइ तरक़ियाती फंड वधाइण ते इतफ़ाक़। इसाकार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी जूं ॻाल्हियूं कामयाब। सूबनि पारां नई माली साल जी वाधू टैक्स आमदनी मर्कज़ खे ॾियण करण ते इतफ़ाक़। ज़रियनि जो चवण आहे त NFC तहत क़ौमी वसीलनि जी विरासत वारे फार्मूले में का बि तब्दीली न कई वेंदी। सूबा हलंदड़ माली साल जी आमदनीअ जे हिसे मां वाधू रक़म वफ़ाक़ खे ॾींदा। पाणे जे वसीलनि जे वॾनि मनसूबनि खे जल्द मुकमल करण लाइ सूबा मर्कज़ खे 1200 अरब ॾींदा। मर्कज़ मनसूबनि जे मुकमल थियण खां पोइ सूबनि खां वरितल वाधू फंड वापसि कंदो। पंजाब 620 अरब, सिंध 310 अरब, KP 180 अरब ऐं बलोचिस्तान 85 अरब वफ़ाक़ खे ॾींदो।

बम हमलनि या जंग सां ईरानी क़ौम खे झुकाए नथो सघिजे। सिफारतकारीअ खां पोइ हिते नायूं हटिया, पर जंग जो जवाब बि जंग सां ॾींदासीं। ईरानी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप जी धमकियुनि ते सख़्त रद अमल। मसूद पशकियान जो चवण हो त ग़ज़ा एतिरो नंढो आहे, अञा ताईं उन खे शिकस्त नायो ॾेई सघिया। ईरान त एॾी वॾी क़ौम आहे, उन खे शिकस्त कीअं ॾींदा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: आवाज भी GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू तू कर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।